0: प्रियता
1: आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे धीरे धीरे पागल हो रहे
2: हैं अन्नपा मेक उगलाक
3: और सैया तेरा ट्रिपी ट्रिपी
4: सैया ता हॉट एंड स्पाइसी विद सुधु कोची
2: हाँ वैसे पाहा में निकांग सुधु कोची और आते का